और शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका क्या कहती हैं. सना गाना पहले ही कह चुकी हैं कि देखो समटाइम्स हैप्पीनेस इज़न लाउड इज जस्ट अ पीसफुल मोमेंट. बिल्कुल शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका. एग्स आर अमंग द मोस्ट न्यूट्रिएंट डेंस, मतलब जिसमें बहुत भरी हुई है गजा. न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स अवेलेबल कंटेनिंग वर्चुअली जीरो शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ये अंडों में आपको मिलेगा. बहुत ज़्यादा गजाई जो है चीज़ें इसमें शामिल हैं, होती हैं कुदरती अंडों में. द योक ऑफ एन एग इज़ पैक्ड विद विटामिन ए, कोलीन, बी विटामिन्स, ट्रेस मिनरल्स एंड इवन बेनिफिशियल फाइटोन्यूट्रिएंट्स फॉर आई हेल्थ. ये सब अंडों में है. आपकी आंखें ठीक रहती हैं. अंडे खाते जाओ, समय लोग बीमार भी होते जाते हैं. अंडे खाते जाओ, कोई खास फर्क नहीं पड़ता. रसिला विशिंग यू द बेस्ट फॉर टुडेज म्यूजिकल जर्नी. वाह, पंछी बनू पोरस्टा. मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है ये गाना. चिराग पटेल फ्रॉम करटीना, सबको कहा है गुड मॉर्निंग. और यही मैसेज आया जबीन हिरानी की जानिब से. कहती हैं कि देखो, बी मोर कंसर्न्ड विद योर कैरेक्टर देन विद योर रेप्यूटेशन. आपका किरदार कैसा है उस पर ध्यान दें, ना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या है आपकी रेप्यूटेशन. बिकॉज योर कैरेक्टर इज व्हाट यू रियली आर, व्हाइल योर रेप्यूटेशन इज मेयरली व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू. बहुत अच्छे जबीन हिरानी. और अमीर अली राणा ने जो कहा है एक गाने के बाद,

0: पे जैमर वो भी लता की आवाज में। अब अमीर अली राना कहते हैं उसे देखते ही चेहरा यूं खिल जाता है जैसे उसके होने से मुझे सब कुछ मिल जाता है। कैसे बताऊं कि तू क्या है मेरे लिए, तुझे बस एक बार देख लूं तो मेरा पूरा दिन बन जाता है। अमीर अली राना, बहुत खूब। और सलमा अहमद,
1: थर्सडे थ्रोबैक की क्या है शायरी है ये। वक्त ने खामोश रहना सिखा दिया, हालात ने दर्द सहना सिखा दिया, अब किसी की आस ना रही जिंदगी में, तन्हाइयों ने हमें अकेला रहना सिखा दिया। शुक्रिया, सुबह का प्यारा सलाम, सलमा अहमद किसुमो।
0: कल आप तन्हा ही होंगे, समय कल जुमे का दिन है और मैंने छुट्टी ली है। कल फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब जुमा, सोमवार और मंगल मैं साहिल पे होंगी, मुंबासा जा रही, तो आपसे इजाज़त मांगे बगैर नहीं जा सकती, सोचा आपको बता दूं। क्योंकि सलमा अहमद ने बात की थी तन्हाई की, तो उससे इजाजत भी निकले। रंजन विनोद, थर्सडे, हैप्पी थर्सडे टू ऑल डियर फ्रेंड्स एंड लिसनर्स, लवली सॉन्ग पंछी बनो। भरत गंगाराम इन लंदन, आपका वंदनीय परवीन जी स्वागत है। क्या बात है। सोनल मोदा, हैप्पी थर्सडे टू ऑल, ब्यूटीफुल सॉन्ग, सभी का फेवरेट निकला है ये सॉन्ग। और रसीला ने कुछ लिख कर भी भेजा है, लेकिन मैं आपको पहले मोहम्मद रफी की आवाज़ सुना दूँ।

0: और समय जो बात आपसे करनी है वो है कर्नाटका की फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। समय जैसे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हर मुल्क में है, अमेरिका में भी है, एफडीए अगर नहीं अप्रूव करता तो कोई दवाई कोई वैक्सीन बाजार में नहीं आ सकती, इस तरह के वो काम करते हैं। खैर वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन रसीला ने कहा देखो लाइफ कैन फ्लिप इन अ सेकंड। कैसे? वन फोन कॉल, वन डायग्नोसिस, वन अनएक्सपेक्टेड मोमेंट एंड एवरीथिंग चेंजेस। कहती है नथिंग इज गारंटीड, नॉट टाइम, नॉट हेल्थ, नॉट द पीपल यू लव। सो क्या करना चाहिए? लिव लाउडर, अप्रिशिएट डीपर एंड से यस टू एवरी मेमोरी। What feels normal today may be something you pray for tomorrow. So, take nothing for granted. बहुत अच्छे रसीला। और अब क्या करते हैं, ब्रेक लेकर मैं आपको कर्नाटका की खबर।
1: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
2: It's 10, 20.
3: Imagine getting rewarded for the transaction fees you pay. With Airtel Money, every time you send money to any network, you get 50% back of your transaction fees into your cashback wallet. Buy electricity tokens and you'll get your units plus 50% cashback. And Airtel to Airtel, absolutely free. Why let transaction fees take your money when they can put that money back in your pocket with Airtel Money? Airtel Money. Download the My Airtel app or dial *334#.
4: Kenya's premier Asian mix continues.
1: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: और शोभना और दिनेश ने क्या कहा, जर्नी इन द बेस्ट वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन. हमारे जैसा समय संगीत किसी का हो ही नहीं सकता. वेयर एक्सेप्शनलिटी लिव्स इन एवरी वर्ड, एक्सेप्शनल वर्ड्स, क्या बात है, अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोफेशनलिज्म. समय अगर आपने किसी पेशे में काम किया है, खास तौर पे टीचिंग में, अगर आप उस्ताद रहे हैं, टीचर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं फॉर रेडियो प्रेजेंटेशन में. मुझे लगता है कि टीचरों को बनना चाहिए प्रेजेंटर. ओके, अब शोभना एंड दिनेश, थैंक यू सो मच. आगे कौन हैं, आगे आए हैं. वेर एवर यू गो, वट एवर यू डू, मे गॉड्स एंजल्स वॉच ओवर यू. हाउ नाइस. नज्जू फ्रॉम ब्रिस्टल यूके, गुड मॉर्निंग परवीन जी, यू डिजर्व इट. चलिए, नज्जू ने कह दिया है फ्रॉम ब्रिस्टल कि जाओ जाओ हॉलीडे. बहुत अच्छे, थैंक यू. सलमा अहमद, परवीन जी, एज द सेइंग गोज, एक्शन स्पीक लाउडर. टुडेज मैसेज फ्रॉम यू दैट यू विल बी ऑन बोर्ड फॉर अ फ्यू, नॉट बी ऑन बोर्ड. अकॉर्डिंग टू मी, थॉट्स स्पीक लाउडर, एज आई कॉन्ट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन वर्ड्स, बट माई थॉट ऑफ मिसिंग यू is a hypothetical example. It's a true example. आपको भी मैं miss करूँगी, जो थोड़े दिन की बात है. इंशाल्लाह बुध के दिन मैं वापस आऊँगी. ML विश्वकर्मा कहते हैं, मेरा quote पढ़ दीजिएगा, शुभ प्रभात. अच्छा, strongest freedom comes when you escape prison of people's opinions. समझ, लोगों की जो राय है ना, वो एक कैद खाना है. लोग क्या कहेंगे, अगर आप इस कैद खाने से निकल आते हैं, आप आजाद हैं, स्वतंत्रता आपकी है. ML विश्वकर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
1: सुभान अल्लाह परिन जी, सुभान अल्लाह परिन जी, बहुत बहुत जजाकल्ला. मैं बोलने ही वाली थी लेकिन बस फोन कट हो गया, इसलिए मैंने नहीं बोला. लेकिन जजाकल्ला परिन जी, अच्छी सी नात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की लगा देना अपना.
0: जी जी, उससे पहले ही और शिरडी वाले साईं बाबा की फरमाइश हुई है,

और विमल चड्डा ने एम्बू से क्या कहा है, कहते हैं थॉट फॉर द डे, कहते स्माइलिंग इज नॉट जस्ट अ वे टू शो हैप्पीनेस, इट आल्सो बिल्ड्स कनेक्शंस एंड क्रिएट्स एन एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही। ओंगाटा रुंगा इससे आरफा, कहते ओह गॉड यू वर्क सो हार्ड फॉर अस, वील मिस यू, वील लव यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी। क्या बात है आरफा, थैंक यू। अमीर अली राना कहते परवीन जी यू डोंट हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम अस दैट यू आर टेकिंग अ कपल ऑफ डेज ऑफ, यू डिजर्व अ वेकेशन वेन एवर यू वॉन्ट, फ्रेंकली यू डिजर्व, यू वर्क सो हार्ड एवरी डे टू कीप अस यूनाइटेड थ्रू द शो, एन्जॉय योर टाइम ऑफ। बहुत अच्छे अमीर अली राना। और सोनल मोदा, गुड, साथ चलते हैं। ज्योति फ्रॉम रुईरू, शी एंजॉयड ऑफकोर्स शिरडी के साई बाबा। रंजन विनोद, साई बाबा का भजन, धन्यवाद। लंदन में है रंजन विनोद। और सेलीडार, यू आर द राइटर ऑफ द स्टोरी ऑफ योर लाइफ, अपनी जिंदगी की जो कहानी है आप खुद तहरीर करते हैं, लिखते हैं। सना, wishing you a smooth and happy journey filled with great adventure। बहुत मेहरबानी, आमीन। चंद्रिका वासंत गोसाई, enjoying। आगे भी गाने आप जरूर enjoy करें।

Hello and a very good evening to you. This is The City Lights with Vishal. And coming up this hour, obviously, is going to be your Mixer Beat Challenge. And Thursday hai, toh throwback ki baatein toh zaroor karenge. So, aaj aisa throwback hai that I have this one thing jiske bare mein aaj soch raha tha main. हमने काफ़ी बार बात की अबाउट आवर स्कूल मेमोरीज, आवर यूनिवर्सिटी मेमोरीज, आवर चाइल्डहुड गेम्स, बट क्या आपको कुछ ऐसी सीरीज़ याद हैं बचपन की सीरीज़ जो हम देखते थे? सो 90s एंड अर्ली 2000s वाज पॉपुलर विद द हिंदी टीवी सीरीज़ दैट वर एक्चुअली सो अमेजिंग एंड हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते थे. एंटरटेनमेंट तो था ही, देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, बट दे ऑलवेज यूज टू टीच अस समथिंग. तो कुछ ऐसे सीरीज़ के बारे में हम बात करेंगे. एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव व्हाट डू यू से, यू रिमेंबर दिस सीरीज़ दैट यू यूज्ड टू वॉच बैक देन एंड दे वर सो एंटरटेनिंग, शेयर योर थॉट्स विद मी ऑन 0701 106 106.

0: The Spring for East FM, Kenya's Premier Asian Mix. This is the City Lights with Vishal. And hum baat kare about 90s ki series ki and those memories that aajkal bhi hamare zehen mein kahin na kahin zinda hai. And bahut sari series thi 90s ki and early 2000 ki jahan pe we had the likes of Dekh Bhai Dekh. Bahut popular series thi ye. Then we had Shriman Shrimati. ये भी बहुत लोगों को पसंद आई थी एंड ऑफ कोर्स वी हैड अ लॉट ऑफ अदर सीरीज एज वेल लाइक हम पांच. हम पांच वेंट ऑन फॉर एटलीस्ट मोर देन 10 years जहां तक मेरे को याद है एंड ऑफ कोर्स इंडियाज फर्स्ट सुपर हीरो. एंड जब ये सीरीज रिलीज हुई थी एवरीबडी वाज लाइक ओके यू नो व्हाट मेरे को भी इनके जैसा बनना है. दिन में कुछ और रात में कुछ और. And that is none other than India's first superhero, Shaktiman. मेरे को आज भी वो ट्यून याद है जब वो घूमते थे ना ऐसे हाथ ऊंचा करके राइट हैंड ऊंचा करके एंड देन ही यूज्ड टू गो राउंड एंड देन फ्लाई अवे. सो कौन सी ऐसी सीरीज है दैट यू स्टिल रिमेंबर एंड फॉन्ड मेमोरीज है वो सीरीज की एंड इफ इट रिलीज अगेन टूडे यू वुड डेफिनेटली वॉच इट. So I've got Amar who goes on to say Hum Panch definitely and I totally agree with that. Coming up next is going to be your Mixable Challenge.
1: It's 7:24. Do you have a comment or complaint about East FM, one of our programs or a segment of a program? There are a number of ways you can make a complaint or comment. You could send us an email to complaints@radioafricagroup.co.ke or call us on 0711 046 000. Your complaint will be investigated and a response sent to you within 14 days. Just remember to keep a copy of all communications between you and us. We listen to you because you listen to us. East FM.
2: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.

दास प्लेइंग फॉर ईस्ट एफएम के इंस्पिरेशन मेक्स दिस इज द सिटी लाइट्स विद विशाल एंड हम बात कर रहे थे कि ऐसी सीरीज के बारे में दैट वी कैन स्टिल वॉच टाइम एंड अगेन जो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है कुछ सीरीज देख के सो आई हैव गॉट सोनल हु गोज ऑन टू से दैट देयर वाज शी यूज्ड टू वॉच नुक्कड़ बुनियाद विक्रम बेताल यस आई दोज आर अमेजिंग एज वेल हम पांच एवरीबडी हैज सेड दैट सो आई थिंक वो यादें कहीं ना कहीं हमेशा ताज़ा हो जाती हैं व्हेन यू वॉच दिस ओल्ड सीरीज एंड कुछ ऐसी सीरीज हैं आई बिलीव दे हैव कम्प्लीटेड ओवर आई थिंक 18 years 20 years एंड दैट इज तारक मेहता का उल्टा चश्मा एंड रिसेंटली उनकी मैंने आई थिंक कल परसों आई केम अक्रॉस अ रील ऑन सोशल मीडिया जहाँ पे दे एक्चुअली वर पार्ट ऑफ द परेड इन न्यूयॉर्क सिटी US में एंड दैट इज़ सो नाइस यू नो इंडिया इतने साल से ये सीरीज चल रही है एंड इट्स गॉट द रिकग्निशन एज दैट इट डिज़र्व्स एंड उसके बारे में थोड़ी देर बाद के बारे में बात करेंगे बिकॉज आई थिंक समटाइम्स इट डज बिकम अ बिट मोनोटोनस इफ आई मे से सो बट इट इज़ वन सीरीज दैट एवरीबडी लव्स एंड दैट इज़ तारक मेहता का उल्टा चश्मा सो राइट नाउ इट्स टाइम फॉर योर मिक्स बीट चैलेंज जहाँ पे दो गाने हैं एंड यू हैव टू टेल मी विच आर दीज टू सॉन्ग्स आई एम लुकिंग फॉर टुडे ध्यान से सुनिएगा दीज साउंड लाइक दिस

कौन से दो गाने हैं ये दैट आई एम लुकिंग फॉर टुडे एंड इन केस यू नो द करेक्ट आंसर यू कैन सेंड मी अ वॉइस नोट और मैसेज ऑन 0701 106 106 और यू कैन गिव मी अ कॉल ऑन 0711 046 106

Ashi Konki Colony playing for Nisu from Kenya's Premier Mix. This is the City Lights with Vishal. And hum baat kar rahe the about the series, old series, 90s and early 2000s ki series jo thi. You know, we used to all watch together. Ek aisi series thi, dharmic series, and Sunday ke Sunday aati thi, and everybody used to love that series, and that is none other than Ramayan. Pura parivar ikattha hoke baith jata tha, and अगर एपिसोड मिस हो गया दैट वुड हैव बीन अ डिजास्टर. मतलब पूरा हफ्ता वेट करना पड़ता था. आजकल क्या है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, जाओ अपना लॉग ऑन करो सोशल इंटरनेट पे एंड यू कैन फाइंड ऑल द सीरीज जो भी आप चाहते हो. कहीं ना कहीं कोई आजकल पूरी सीरीज जो होती थी ना, व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज द होल फैमिली यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड वॉच पर्टिकुलर सीरीज. रामायण हो, चाहे हम पांच हो, या देख बाई देख, या श्रीमान श्रीमती, शक्तिमान, द चिल्ड्रन यूज्ड टू वॉच, इवन पेरेंट्स यूज्ड टू एंजॉय दैट. आजकल क्या हो गया, कोई साथ में बैठ के कोई सीरीज ही नहीं देखता. अर्ली 2000s में एक दो ऐसी सीरीज आई थी दैट टुक द इट रिलीज ऑन स्टार प्लस एंड इट टुक द what do we say, the TV industry by storm. And वो series, चलो मैं I'm not gonna lie, मैंने तो इतना नहीं देखा, कुछ episodes देखे थे मैंने, and that was none other than वो जो two series that took the Indian TV industry by storm was none other than कहानी घर घर की, and दूसरा कौन सा था, ये आजकल 2.0 भी आया इसका version, अरे कौन सा था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी. These two series, when they released, they took the TV industry by storm. And right now, थोड़ी देर बाद, I'm going to reveal the answer for the Mix of Beat Challenge. एक बार फिर आपको याद दिला देता हूँ. These are the two songs I am looking for today. One more time. So which are these two songs that I am looking for today? And in case you know the correct answer, you can send me a message on 0701-106-106. Fastest finger first, jinhone sabse pehle sahi jawab diya hai, is none other than Amar. You have given me the correct answer.